0: बाल होने वाली है आज, बस पैसा पैसा बहनों के पास होने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है बहनों को। वैसे भाई और बहन का रिश्ता ना तो बहुत ही प्यारा होता है यार, जितनी नोक झोंक जितनी लड़ाई आपस में करते हैं ना, तो उससे गहराई ना तो उनका एक रिश्ता होता है। एक भाई के लिए और एक बहन के लिए उसके ज़िंदगी में पहला दोस्त कौन होता है बताए, उसका भाई या उसकी बहन होती है, क्योंकि दोनों एक साथ बड़े होते हैं और बहुत सारी प्यारी यादें होती है। यादों के साथ तो ऐसे कुछ मेमोरीज होते हैं जो कि लाइफ टाइम हमें याद रहते ही है। एंड भले हम छोटे हो बड़े हो या बूढ़े हो, भाई बहन का रिश्ता कभी खराब मत होने दो, इतना ही मैं कहूंगा। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है ना कि किसी के जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। बहुत ही बेहतरीन शेर है, मुनव्वर राना साहब ने कहा है, तो सभी बहनों के लिए ये शेर डेडिकेट करते हैं। तो आज अपने शो में ना तो रक्षाबंधन पर ही बात होगी, पूरे शो में बस भाई और बहनों की बात होगी, किस तरीके से क्या होगी बताऊंगा, और आपसे भी रूबरू होने का मौका मिलेगा यानी कि कॉल के जरिए, किस तरीके से जानेंगे हम कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान इन द शो,
1: only on MGM 90.8 FM।

है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। रक्षाबंधन आने वाला था, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ था। अर्जुन और उसकी बहन नेहा, किसी बात पर बहस हो गई थी और नेहा ने साफ कह दिया था, इस बार राखी नहीं भेजूंगी, तुझे बहन की कदर ही नहीं है। अर्जुन ने भी गुस्से में जवाब दे दिया, ठीक है मत भेज, किसी ने मना थोड़ी किया है तुझे। दिन बीतते गए, रक्षाबंधन आ गया। सुबह सुबह अर्जुन की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले दरवाजा देखा, ना कोई कुरियर, ना कोई पैकेट, ना कि बहन की राखी। अर्जुन पूरे दिन फोन का इंतजार करता रहा, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। शाम को चुपचाप छत पर जाकर बैठ गया और अचानक जेब में कुछ चुभा, निकाला तो एक पुराना लिफाफा था, नोट लिखा था, भले तू लड़ ले, गुस्सा कर ले, पर मैं हर साल तुझे राखी जरूर भेजूंगी, क्योंकि तू मेरा भाई है और मैं मानने वाली बहन हूँ। अर्जुन की आंखें भर आई। बस वहीं बैठकर उसने नेहा को कॉल किया, फोन उठाते ही बोला, इस साल वाली राखी देर से पहुंची क्या? मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, इस बार सोचा था तू मानेगा तभी भेजूंगी। और अगले दिन राखी आ भी गई, क्योंकि बहन चाहे कितनी भी नाराज हो मान ही जाती है।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Good morning, Chhatrapati Sambhaji Nagar. You are listening to MGM 90.8 FM. All is वक्त हो चुका है आज के गानों की फरमाइश पूरी करने का. सो आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो. बाय द वे, आज गाने की फरमाइश आई है रेणुका गौर इनके

क्या बात है, रेणुका जी ने बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है, तो अब इनकी फरमाइश पूरी करना ही है। बाय द वे दोस्तों, आपकी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम तक पहुंचाइए और फिलहाल एंजॉय कीजिए आने वाला सुपर हिट गाना फरमाइश वाला ऑन MGM 90.8 FM।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: एडमिशन कॉन्टैक्ट 9371714265 और विजिट www

0: कुछ ऐसे लोग भी अपने शहर में जिन्हें दिल से सलाम तो बनता ही है। तो बात है अपने घाटी अस्पताल की। तो साल 2026 में यानी कि अब तक ना तो 18 लोगों ने जो कि फरिश्ते बन के आए थे और उनकी वजह से ना तो तकरीबन 26 लोगों को नई जिंदगी मिली है और एक दुनिया जीने की एक नई उम्मीद मिली है। बात कुछ ऐसी है कि सर्वात श्रेष्ठ दान म्हणजे नेत्रदान असं म्हटलं जातं। त्यामुळे सगळेजण म्हणतात की नेत्रदान करायला पाहिजे, याबद्दल अवेअरनेसचे कार्यक्रम होत आहेत। तर आपल्या शहरातील 18 जणांनी 2026 आतापर्यंत नेत्रदान केलेलं आहे आणि त्यांच्या 26 जणांना नवीन आयुष्य मिळालेलं आहे। तो उनके नजरिए से अब ये दुनिया देखेगी। तो इन 26 लोगों की जिंदगी का अंधेरा दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ग्रैंड सल्यूट बनता है ऐसे लोगों को। एंड फिलहाल शुरू है नेत्रदान पंधरवाड़ा म्हणजे आई डोनेशन फॉर्टनाइट। इसका मकसद क्या होता है? हम सबको जागरूक करना। दुनिया से जाने के बाद भी ना अगर हमारी आंखें किसी की अंधेरी जिंदगी को रोशनी दे पाए तो इससे बेहतरीन काम कोई हो ही नहीं सकता। सवाब वाला पुण्य वाला काम जो कहते हैं वो यही होता है। जैसे 18 लोगों की वजह से ना तो 26 लोगों को नई जिंदगी मिली है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस जिंदगी में वो रोशनी देख पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये सपना उनका पूरा हो गया। तो आप भी इस बारे में जरा सोचिएगा, क्या पता आपकी वजह से किसी को एक नई जिंदगी मिल जाए, आपके जाने के बाद किसी और की जिंदगी में रोशनी आ जाए। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है पुण्य का सवाब का, सोचिए इस बारे में। बाकी तो अपने बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंग्जाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: होटल में जाने के बाद हम बड़े तशन में बोलते थे, भैया एक दाल फ्राई तड़का मार के। लेकिन अब ये तशन थोड़ा कम होने वाला है भाई, सच्ची कह रहा हूँ मैं। हमारी प्यारी घरेलू तूर दाल ने अब आम आदमी के दिलों से सीधा उसके वॉलेट पर हमला बोल दिया है, क्योंकि उसके भी दाम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और पिछले 10 दिनों में तकरीबन 10 रुपए प्रति किलो इसके दाम बढ़ गए हैं। जहां पर हमारी ये तूर दाल 110 रुपए किलो मिलती थी, एक जमाना था जब 100 रुपए में मिलती थी, उससे कम में भी मिलती थी, तो आज इसके रेट पहुंच गए हैं 118 से 120 और 122 रुपए प्रति किलो पर। मतलब जो दाल कल तक सबको सिंपल और सस्ती लगती थी, आज वो खुद को काजू किशमिश की तरह फील कर रही होगी। तो अब अपना मंथली बजट थोड़ा बिगड़ने तो वाला ही है, क्योंकि दाल महंगी हो गई, शक्कर महंगी हो गई, गुड़ महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, लगभग सभी चीजें महंगी हो रही है। बस हमारी सैलरी छोड़ के हर किसी के दाम बढ़ रहे, यही एक आजकल हमें दिखाई दे रहा है। और वैसे ट्विस्ट क्या है पता है आपको? लगता होगा कि इस महंगाई की वजह से हमारे किसान भाइयों को कुछ फायदा होता होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में ना तो किसानों ने पहले अपना जो तूर दाल थी वो बेच दी है मिल को, अब असली मलाई तो ये मिल वाले खाने वाले, क्योंकि पूरी की पूरी दाल उनके पास पड़ी है और वहीं से मार्केट में सप्लाई की जाती है। तो असली फायदा इसका मिल वालों को होने वाला है, किसानों को बिल्कुल भी नहीं। तो भाई सब कुछ गोलमाल है ऐसा लग रहा है, बस करे तो करे क्या, हर एक चीज के दाम बढ़ते हैं और सीधा इसका असर आम आदमी के जेब पर होता है, उसके जेब कट जाती है। खैर आप क्या ही करें, झेलना तो आम आदमी को ही है। जरा बोलना कम करते और गाने एंजॉय करते, जहां महंगाई चाहे जितनी बढ़े लेकिन एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री रहेगा मेरे और अपने और हम सभी के शो में, जिसका नाम है
1: ओनली ऑन MGM 90.8।

0: भी हालात हो, ये रिश्ता हमेशा साथ होता है, ये रिश्ता हमेशा साथ होता है। तो जैसा ही पवित्र ये रिश्ता होता है भाई और बहनों का, एंड भाई बहन जब साथ में होते हैं ना तो एक मुंह ठीक से बात नहीं करेंगे, हमेशा झगड़ा करेंगे और छोटी छोटी चीजें नोटिस करेंगे। जैसे कि अगर आज हमने बहन को पानी दिया और हमें पानी की जरूरत हुई, तो हमने अगर बहन से पानी मांगा तो फिर उसने मना किया, तो फिर हम याद दिलाते हैं कि पिछले महीने के 2 तारीख को 3:02 पर मैंने तुझे पानी दिया था, अब तेरी बारी है। ये एक चीजें ना तो हर भाई और बहन ऐसे याद रखती है, भले उनको सिलेबस याद ना हो लेकिन ऐसी छोटी चीजें तो याद रहती है। और चाहे फिर बहन सगी हो या फिर बहन मानी हुई हो, बहन बहन होती है। हमारे लाइफ में भी ना तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी होती है जो कि सगी नहीं होती लेकिन सगी से बढ़कर उनका ओहदा हमारे जिंदगी में होता है। जाने अनजाने में किसी नए शहर में जाकर ना तो कोई एक ऐसी दोस्त मिलती है जो बहन के रूप में हमें वो दोस्त मिलती है, और वो बहन का प्यार, वो बहन की कमी हमें कभी महसूस नहीं होने देती। तो ऐसा ही होता है रिश्ता भाई और बहन का। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, और आप भी ना तो अपने बहन के साथ भाई के साथ की कुछ प्यारी प्यारी यादें होगी, मेमोरेबल, तो जरा हमारे साथ शेयर कर सकते हो। कॉल कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। कुछ किससे कहानियां होगी तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, नंबर फिर से एक बार दोहराता हूँ 9359320080 एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक ज्ञान एक फ्री मिळवा. स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
4: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल. स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: What's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, अमृत नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
6: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स।
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
7: ही ऑफर 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: सुपर हिट गानों के बाद आरजे अदनान आपके साथ आया है इन द शो. आणि आज आपण सेलिब्रेट करतोय रक्षाबंधन. तर याच निमित्ताने मी विचारलं होतं की यार तुमच्या भावासोबत बहिणीसोबत काही मस्त मस्त छान छान आठवणी असतील तर आमच्यासोबत शेअर करा. क्योंकि यार जरा मैं भी सुनना चाहता हूँ की आपकी क्या कुछ यादें है और बढ़िया सी मेमरीज है. तर आता आपल्या सोबत कॉलर कोण आहे बघूयात. हॅलो, तुमचं नाव? हाय रिंकू, कशी आहेस?
1: मस्त.
0: तर तुझ्या काय आठवणी आहेत रक्षाबंधनच्या किंवा लहानपणीच्या भावासोबत?
1: लहानपणीचं एक आठवण. हिंदी चालेल ना?
0: हो चालेल.
1: ओके. बहुत पहले की बात है, हम जब छोटे थे तो मेरी छोटी बहन है, मेरा एक छोटा भाई है और मैं घर में बड़ी हूँ. तो मेरी छोटी बहन ने अपने बुढ़क में बहुत सारे पैसे जमा किए थे और मेरे भाई को रक्षाबंधन को गिफ्ट देना था. तो उसने बहुत सोचा क्या गिफ्ट दू क्या दू, क्योंकि मैंने उसको सिकली बना किया था, पैसे तो मैं नहीं लेने वाली. तो वो गिफ्ट के लिए एक तो उसने पैसे जमा नहीं किए, उसके बाद में उसने मेरी बहन का गुल्लक तोड़ा, उसमें से उसने हमारे लिए घड़ी ली और हमको गिफ्ट किया. हमने उसको पूछा उस दिन कि ये कहाँ से लाया तुमने, पैसे जमा किया क्या? हाँ हाँ मैंने पैसे जमा किया वगैरह. दो दिन के बाद पता चला कि जहाँ से उसने पैसा लिया वो मेरी बहन के गुल्लक से ली.
0: अच्छा.
1: तो ये मतलब मेरा भाई इतना ये है, वो पूरे दिन लड़ता है लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन आती है उस दिन इतना शरीफ बनता है, बस मानो कि बहुत शरीफ हो. मतलब वो के लिए
0: मतलब भाई लोग ऐसे होते हैं, मतलब रक्षाबंधन के दिन अपने आप वो शराफत चेहरे पर नजर आ ही जाती है.
1: जी
0: जी जी. सो आज इस रक्षाबंधन के मौके पर क्या कुछ अच्छा सा कहना चाहोगे अपने भाई को?
1: बस यही कहना चाहती हूँ कि भले ही हम कितना ही लड़े लेकिन एक बॉन्डिंग है. अगर लड़ने के बाद हम एक दूसरे को बहुत फाइट करते हैं, मारते हैं, लेकिन जब उसको लगता है तो डर तो खुद को भी होता है और फिर बाद में अफसोस होता है कि नहीं नहीं करना चाहिए था. और बस इतना चाहती हूँ कि जितना भी भाई जैसे लड़ते रहे साथ रहे, फ्यूचर में आगे भी ऐसे यादें बनाते हैं. और रक्षाबंधन बहुत अनोखा दिन है जो बहनों के लिए सबसे
0: थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. सो आपकी भी कुछ ऐसी प्यारी सी यादें होगी तो शेयर कीजिएगा 9359320080 इस नंबर पर कॉल करके. एंड स्टे ट्यून्ड
2: ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड, 9503109429, त्रिमूर्ति चौक, 9699703562, आणि चिकलठाणा 9765822991।

यश की फिल्म जिसका हम सभी को इंतजार था टॉक्सिक, इसने टॉक्सिक कर दिया क्या? तो बात कुछ ऐसी है कि 26 अगस्त को रिलीज हुई थी यश की मच अवेटेड मूवी टॉक्सिक। इसको लेकर सोशल मीडिया पे हर तरफ ना तो बहुत मिक्स और बहुत ही अजीबोगरीब रिव्यू आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी मूवी टॉक्सिक थी कि मुझे एग्जिट दिखाई दे रहा था बार बार, लेकिन मैंने सोचा कि इतना टिकट का पैसा भरा है तो थोड़ा सहन कर लेते हैं। आप सच्ची बोलूं क्या, मैंने खुद मूवी अब तक नहीं देखी, लेकिन जो रिव्यू मेरे सामने आ रहे हैं, जितने मैंने रिव्यू देखे हैं पढ़े हैं, तो उन सभी से एक दिख रहा है कि यार ये फिल्म के अंदर थोड़ी ऑडियंस डिवाइड हुई है। कहते हैं कि जो यश का डाई हार्ड फैन होगा, जो बस यश को देखने जाएगा, तो उसको ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली है, और जो मूवी देखने के नजरिए से जाएगा, जिसमें स्टोरी सोचेगा, डायलॉग, एक्शन, ओवरऑल प्लॉट क्या है मूवी का, तो उनको ये मूवी पसंद नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि यार बहुत ही ओवर रेटेड दिखाया गया है। एंड यश का काम तो बेहतरीन है ही, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यश पर किया गया है और स्टोरी पर उतना फोकस नहीं किया है, स्टोरी पर काम कम किया है, ऐसा ऑडियंस का कहना है और कुछ क्रिटिक्स होते हैं उनका भी यही कहना है। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि केजीएफ के बाद यश से लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे, तो शायद प्रॉब्लम वहीं अटकी है। ऑडियंस को लग रहा था कि केजीएफ के लेवल का कुछ मिलेगा हमें, और दिल के अरमा ऑडियंस के आंसुओं में बह गए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये केजीएफ का अगला पार्ट ही है। बहुतों का ऐसा भी कहना है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, कि यश अभी भी ना तो केजीएफ वाले कैरेक्टर में नजर आता है फिल्म के अंदर, वही लुक है और एक्शन भी वही है। तो सिंपल है, टॉक्सिक को लेकर ना तो दो टाइप का ओपिनियन है, किसी को फिल्म बहुत पसंद आ रही है, किसी को 19-20 पसंद आ रही है। सवाल यह है कि क्या ये फिल्म एक्सपेक्टेशन से हार गई, या फिर ऑडियंस ने एक्सपेक्टेशन ही कुछ ज्यादा रखी थी इस फिल्म से। वैसे आपने अगर टॉक्सिक देखी है तो कैसी लगी बताइए जरा डीएम के जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8।

0: ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादा श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स.
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
4: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
5: द्वारकादा श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादा श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 93717142 65 or visit www.mgmu.ac.in.
6: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स।
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
6: ही ऑफर 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे से पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जानें, उनकी अहमियत समझें और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाएं, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मीडिया और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून। All is well with RJ Adnan.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड, 9503109429, त्रिमूर्ती चौक, 9699703562, आणि चिकलठाणा 9765822991।

शर्म तेरी कसम वाले गाने को थोड़ा रुकाते हैं और मेरे बातें सुनते हैं। हेलो, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और वक्त हो गया है मेरा आपसे फिलहाल अलविदा लेने का, टाटा बाय बाय करने का। आज का दिन है शुक्रवार है और बहुत सारे लोग आज ऑफिस से छुट्टी लिए होंगे क्योंकि आज तो है रक्षाबंधन। तो बहनों के तो मज़े भाई, आज भाइयों से उन्हें गिफ्ट मिलने वाला है, पैसा ही पैसा आएगा। और भाई लोग आप थोड़ी चिंगूसी मत कीजिएगा, एक ही दिन होता है तो हक से जो बहन मांगती है वो जरूर दीजिएगा उसे और मुस्कान की चमकान बरकरार रखिएगा। बाकी तो मैं चला, अब अपनी गली ख्याल रखना अपना, मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे और फिर से मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन और चलो टाटा बाय बाय, सी यू एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक जो अभी प्ले होगा ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrist, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
5: For admission, contact 9371714265 or visit www.

ಪಾಪಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೊತ್ತಿ ಕೊತ್ತಿ ಕೆವಡ

0: ಕಾಂದಾ
1: ಮಿರ್ಚಿನ ಕಾಂದಾ ಹೇ.

0: कड़क।
1: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
2: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हज़ार

फो की शाम पी लीजिए।

0: is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
5: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
1: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
5: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
1: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, दात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
5: ही ऑफर 9-17 August 2026 पर्यंत। पत्ता, द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765829991।

0: Exploring what's next.
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
6: Buy one get one free. Hoy hoy khara, ek gyan ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwarkada Shyam Kumar ghiun aale aahe shandar offers.
5: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiva ladies dress. Tumchi favorite sari buy one get one free.
6: Manje style double ani shopping cha anand hi double. Swatantra din sajra kara navya शॉपिंग सोबत।
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
6: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562, आणि चिकलठाणा 9765।

0: गुड मॉर्निंग आरजी अदनान आपके साथ इन द शो एंड आज है वो दिन यार जिसका बेसब्री से इंतजार होता है पूरे साल भर, भाई बहनों वाला दिन, वो है रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन। खुश नसीब है वो भाई जिसके सर पर बहन का हाथ होता है, चाहे कुछ भी हालात हो, ये रिश्ता हमेशा साथ होता है, ये रिश्ता हमेशा साथ होता है। कुछ ऐसा ही पवित्र ये रिश्ता होता है भाई और बहनों का। एंड भाई बहन जब साथ में होते हैं ना तो एक मुंह ठीक से बात नहीं करेंगे, हमेशा झगड़ा करेंगे और छोटी छोटी चीजें नोटिस करेंगे। जैसे कि अगर आज हमने बहन को पानी दिया और हमें पानी की जरूरत हुई तो हमने अगर बहन से पानी मांगा तो फिर उसने मना किया तो फिर हम याद दिलाते हैं कि पिछले महीने के 2 तारीख को 3:02 पर मैंने तुझे पानी दिया था, अब तेरी बारी है। ये एक चीजें ना तो हर भाई और बहन ऐसे याद रखती है, भले उनको सिलेबस याद ना हो लेकिन ऐसी छोटी चीजें तो याद रहती है। और चाहे फिर बहन सगी हो या फिर बहन मानी हुई हो, बहन बहन होती है। हमारे लाइफ में भी ना तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी होती है जो कि सगी नहीं होती लेकिन सगी से बढ़कर उनका ओहदा हमारे जिंदगी में होता है। जाने अनजाने में किसी नए शहर में जाकर ना तो कोई एक ऐसी दोस्त मिलती है जो बहन के रूप में हमें वो दोस्त मिलती है और वो बहन का प्यार, वो बहन की कमी हमें कभी महसूस नहीं होने देती। तो ऐसा ही होता है रिश्ता भाई और बहन का। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आप भी ना तो अपने बहन के साथ, भाई के साथ की कुछ प्यारी प्यारी यादें होगी, मेमोरेबल, तो जरा हमारे साथ शेयर कर सकते हो। कॉल कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। कुछ किस्से कहानियां होगी तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। नंबर फिर से एक बार दोहराता हूँ, 9359320080। एंड स्टे ट्यून्ड
1: Only on MGM 90.8.

0: What's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 9067612000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: एडमिशन कॉन्टैक्ट 9371714265 और विजिट www.

0: बाद आरजे अदनान आपके साथ आया है इन द शो। आणि आज आपण सेलिब्रेट करतोय रक्षाबंधन। तर याच निमित्ताने मी विचारलं होतं की यार तुमच्या भावासोबत बहिणीसोबत काही मस्त मस्त छान छान आठवणी असतील तर आमच्यासोबत शेअर करा, क्योंकि यार जरा मैं भी सुनना चाहता हूँ की आपकी क्या कुछ यादें है और बढ़िया सी मेमरीज है। तर आता आपल्या सोबत कॉलर कोण आहे बघूयात। हॅलो, तुमचं नाव? हाय रिंकू, कशी आहेस?
1: मस्त।
0: तर तुझ्या काय आठवणी आहे तर रक्षाबंधनच्या किंवा लहानपणीच्या भावासोबत?
1: लहानपणीचं एक आठवण, हिंदी चालेल ना?
0: हो चालेल।
1: ओके, बहुत पहले की बात है, हम जब छोटे थे तो मेरी छोटी बहन है, मेरा एक छोटा भाई है और मैं घर में बड़ी हूँ। तो मेरी छोटी बहन ने अपने बुढ़क में बहुत सारे पैसे जमा किए थे और मेरे भाई को रक्षाबंधन को गिफ्ट देना था। तो उसने बहुत सोचा क्या गिफ्ट दू क्या दू, क्योंकि मैंने उसको सिकली बना किया था, पैसे तो मैं नहीं लेने वाली। तो वो गिफ्ट के लिए एक तो उसने पैसे जमा नहीं किए, उसके बाद में उसने मेरी बहन का गुल्लक तोड़ा, उसमें से उसने हमारे लिए घड़ी ली और हमको गिफ्ट किया।

0: हमने उसको पूछा उस दिन कि ये कहाँ से लाया तुमने, पैसे जमा किया क्या? हाँ हाँ मैंने पैसे जमा किया वगैरह. दो दिन के बाद पता चला कि जहाँ से उसने पैसा लिया वो मेरी बहन के गुल्लक से लिया.
1: अच्छा.
0: तो ये मतलब मेरा भाई इतना ये है, वो पूरे दिन लड़ता है लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन आती है उस दिन इतना शरीफ बनता है, बस मानो कि बहुत शरीफ हो लोगों के लिए.
1: मतलब भाई लोग ऐसे होते हैं, मतलब रक्षाबंधन के दिन अपने आप वो शराफत चेहरे पर नजर आ ही जाती है.
0: जी जी
1: जी जी. सो आज इस रक्षाबंधन के मौके पर क्या कुछ अच्छा सा कहना चाहोगे अपने भाई को?
0: बस यही कहना चाहती हूँ कि भले ही हम कितना ही लड़े लेकिन एक बॉन्डिंग है. अगर लड़ने के बाद हम एक दूसरे को बहुत फाइट करते हैं, मारते हैं, लेकिन जब उसको लगता है तो दर्द तो खुद को भी होता है और फिर बाद में अफसोस होता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था. और बस इतना कहती हूँ कि जितना भी भाई जैसे लड़ते रहे साथ रहे फ्यूचर में आगे भी ऐसे ही आगे बनाते हैं. और रक्षाबंधन बहुत अनोखा दिन है जो बहनों के लिए सबसे
1: थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. सो आपकी भी कुछ ऐसी प्यारी सी यादें होगी तो शेयर कीजिएगा 9359320080 इस नंबर पर कॉल करके. एंड स्टे ट्यून्ड
2: ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, फिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: कुछ ऐसे लोग भी अपने शहर में जिन्हें दिल से सलाम तो बनता ही है। तो बात है अपने घाटी अस्पताल की। तो साल 2026 में यानी कि अब तक ना तो 18 लोगों ने जो कि फरिश्ते बन के आए थे और उनकी वजह से ना तो तकरीबन 26 लोगों को नई जिंदगी मिली है और एक दुनिया जीने की एक नई उम्मीद मिली है। बात कुछ ऐसी है कि सर्वात श्रेष्ठ दान म्हणजे नेत्रदान असं म्हटलं जातं। त्यामुळे सगळेजण म्हणतात की नेत्रदान करायला पाहिजे, याबद्दल अवेअरनेसचे कार्यक्रम होत आहेत। तर आपल्या शहरातील 18 जणांनी 2026 मध्ये आतापर्यंत नेत्रदान केलेलं आहे आणि त्यांच्या 26 जणांना नवीन आयुष्य मिळालेलं आहे। तो उनके नजरिए से अब ये दुनिया देखेगी। तो इन 26 लोगों की जिंदगी का अंधेरा दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ग्रैंड सल्यूट बनता है ऐसे लोगों को। एंड फिलहाल शुरू है नेत्रदान पंधरवाड़ा म्हणजे आई डोनेशन फॉर्टनाइट। इसका मकसद क्या होता है? हम सबको जागरूक करना। दुनिया से जाने के बाद भी ना अगर हमारी आंखें किसी की अंधेरी जिंदगी को रोशनी दे पाए तो इससे बेहतरीन काम कोई हो ही नहीं सकता। सवाब वाला पुण्य वाला काम जो कहते हैं वो यही होता है। जैसे 18 लोगों की वजह से ना तो 26 लोगों को नई जिंदगी मिली है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस जिंदगी में वो रोशनी देख पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये सपना उनका पूरा हो गया। तो आप भी इस बारे में जरा सोचिएगा, क्या पता आपकी वजह से किसी को एक नई जिंदगी मिल जाए, आपके जाने के बाद किसी और की जिंदगी में रोशनी आ जाए, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है पुण्य का सवाब का, सोचिए इस बारे में। बाकी तो अपनी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8।

होटल में जाने के बाद हम बड़े तशन में बोलते थे, भैया एक दाल फ्राई तड़का मार के। लेकिन अब ये तशन थोड़ा कम होने वाला है भाई, सच्ची कह रहा हूँ मैं। हमारी प्यारी घरेलू तूर दाल ने अब आम आदमी के दिलों से सीधा उसके वॉलेट पर हमला बोल दिया है, क्योंकि उसके भी दाम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और पिछले 10 दिनों में तकरीबन 10 रुपए प्रति किलो इसके दाम बढ़ गए हैं। जहां पर हमारी ये तूर दाल 110 रुपए किलो मिलती थी, एक जमाना था जब 100 रुपए में मिलती थी, उससे कम में भी मिलती थी, तो आज इसके रेट पहुंच गए हैं 118 से 120 और 122 रुपए प्रति किलो पर। मतलब जो दाल कल तक सबको सिंपल और सस्ती लगती थी, आज वो खुद को काजू किशमिश की तरह फील कर रही होगी। तो अब अपना मंथली बजट थोड़ा बिगड़ने तो वाला ही है, क्योंकि दाल महंगी हो गई, शक्कर महंगी हो गई, गुड़ महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, लगभग सभी चीजें महंगी हो रही है। बस हमारी सैलरी छोड़ के हर किसी के दाम बढ़ रहे, यही एक आजकल हमें दिखाई दे रहा है। और वैसे ट्विस्ट क्या है पता है आपको? लगता होगा कि इस महंगाई की वजह से हमारे किसान भाइयों को कुछ फायदा होता होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में ना तो किसानों ने पहले अपना जो तूर दाल थी वो बेच दी है मिल को, अब असली मलाई तो ये मिल वाले खाने वाले, क्योंकि पूरी की पूरी दाल उनके पास पड़ी है और वहीं से मार्केट में सप्लाई की जाती है, तो असली फायदा इसका मिल वालों को होने वाला है, किसानों को बिल्कुल भी नहीं। तो भाई सब कुछ गोलमाल है ऐसा लग रहा है, बस करे तो करे क्या, हर एक चीज के दाम बढ़ते हैं और सीधा इसका असर आम आदमी के जेब पर होता है, उसके जेब कट जाती है। खैर आप क्या ही करें, हिलना तो आम आदमी को ही है। जरा बोलना कम करते और गाने एंजॉय करते, जहां महंगाई चाहे जितनी बढ़े लेकिन एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री रहेगा मेरे और अपने और हम सभी के शो में, जिसका नाम है ओनली ऑन MGM 90.8।

हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मेरी और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपने धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून्ड। All is well with RJ Adnan.